पीआरबीटी पुरुष आवाजमा 01600033852 पीआरबीटी 6054066 सीआरबीटी महिला आवाजमा 01600033853 पीआरबीटी 6054066 सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क 98470 4707 उत्पादक तथा वितरक बिन्दुदासिनी म्युजिक प्राली काठमाडौँ।